कोई भुलेखा नहीं रहिंदा, थोड़ा जा ध्यान देण दी लोड़ है। कृपा होएगी, हो दो बार आख्या, होवेगी कृपा, होवेगी कृपा। पर मन जाप हो राम गोपाल, वो सृष्टि नु पालन वाला जेड़ा जर्रे जर्रे च है, ओनू मन करके जपो। मन और जबान एक करके आखो सतनाम। यह मोलक रतन है। मन जाप हो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो कृपा। ये अस्थाई है, ये चार ताल च। पहला अंतरा है, तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी। तेरे गुण बेअंत ने ते मेरी एक जबान की कह सकती है। तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी, राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। तेरी गति नू कोई नहीं जान सकदा, सब आखो सतना। हर की गत ने को जाने, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जब पई निहाल निहाल निहाल, तेरी गति नू तू अगाध बोध है, कोई जान नहीं सकदा। पर यह जरूर है कि जेड़ा जपूगा ना वो निहाल निहाल निहाल हो चुका। तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ने, कोई जान ही नहीं सकता, बेअंती। आप शब्द रोज पढ़ते हैं, तू सुल्तान कहा हो मियां, तेरी कौन वडाई। किसी बादशाह नू क्या जो आओ मियां जी, तू सुल्तान कहा हो मियां। एक बादशाह नू क्या जो मियां जी, ये कोई वडियाई तो नहीं। गुरु नानक साहब कहते ने, तू एडा वड्डा है, जो तेरी उस्तत होने तक हो रही है ना, वो इन्नी की है कि किसी बादशाह नू मियां कहा जाए। तू सुल्तान कहा हो मियां, तेरी कमर वडाई। इस शब्द विच महाराज कहते ने, तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी, राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जप पई निहाल निहाल निहाल। दूसरा अंतरा है, हमरे हर प्राण सखा, स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे हरे राम नाम धन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, जन नानक हर जप पई निहा निहा निहा। हुण इसका कीर्तन एक सैकड़े वर्ष पुरानी गुरु साहब के समय दी ये रीत है। गुरमुखा वालों हुक्म होया सी कि यह असी रीत कल वचन किया सी। सरदार प्रहलाद सिंह जी सास सुरेंद्र सिंह होर ने यह असी जरूर सुननी, क्योंकि सेवका ने अज का कीर्तन ही है, फिर सवेरे तड़के चले जाना असी। इस वास्ते ये आपकी सतगुणा के चरणा च बैठ के ये पुरातन रीत ये आपकी भेटा है।

सट्टा तेरा ए नहीं। प्यारे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह जी, साडे जीवन दे विच जो सोची विचार और मत अज्ञानता के कारण दुनियावी मोह ममता के कारण अत्यंत तृष्णावां के कारण जो असल सोझी होनी चाहिदी है इंसान नूं वो नहीं है। ते गुरु बाबा जी अपने शब्दां दे राहीं अपने इन्हां पवित्र वचनां दे राहीं सानू ओ मत बख्शदे हन जिस मत नूं गुरु मत आख्या जांदा है। गुरु की मत जो कि जीव के जीवन च आए तो बिना इतनी देर तक जीव के जीवन के जिंदगी दे विच गुरु की मत ना आ जाए उतनी देर तक वह अंधेरे दे विच ही रहिंदा है, अंधकार दे विच ही रहिंदा है। कल दे कीर्तन दे विच असीं यही विचारिया सी मत जो साधारण तौर पे सानू मिली है उस मत दे विच अजिही शिक्षा शामिल नहीं जो कि साडे जीवन नू सफल कर सके, साडे जीवन नू इसकी मंजिल तक पहुंचा सके अते मनुखा जन्म असी सफला कर सके। गुरु बाबा जी की बाणी असी सारे पढ़ते हैं अते गुरु बाबा जी की बाणी दे विच एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि साडे इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा कोई बहुत ही खास पर्पस है। एवें नहीं असी आए, ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत वड्डा रीजन है, एक खास मकसद है जिसनों असी पूरा करना है। ये शिक्षा, ये तालीम असी बड़े कैजुअल माइंड दे नाल सुनते हाँ पर इसनों असी बहुता ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। पर महाराज जी की बाणी इसनों बहुत सीरियसली लेंगे। महाराज जी की बाणी आखदी है तुसी सिर्फ एक ही काम करन दे वास्ते आए हो, तुहाडा इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत एक भारी मकसद है। वो की है? गुरु बाबा जी आखते हैं अपनी पवित्र बाणी दे विच

गुरु महाराज जी दसते हैं कि इंसान सानू समझाते हैं, मत दिंदे हैं, इस शब्द के राही साडे जो जीवन रुक गए हैं, असी राह च ही किते डेरा लगा लिया है, मंजिल तक अपड़े ही नहीं, मंजिल का ख्याल ही नहीं, मंजिल का चेता ही नहीं, अते रस्ते दे विच ही किते डेरा बना लिया है। गुरु बाबा जी ने आख्या मंजिल ते पहुंचन तो पहला डेरा नहीं बनाई जाता, मंजिल ते पहुंचन तो पहला रुक नहीं जाएगा। तेरी मंजिल किते होर है, लेकिन तू डेरा किते होर बना के बह गया है, रस्ते च ही रुक गया है। असि इन्हां कीर्तनां नूं जे ते इस तरह सुनांगे कि असि अपने जीवनां नूं कोई इंस्पीरेशन दे के अगां तोरना है, तो जो साडा फर्ज बनता है वह असि करना है, फिर ते कीर्तन कीते और सुने बहुत ही भागां दी गल है। नहीं ते साडी आदत नूं महाराज जी जानते हैं, वह भी मैं आप जी नूं सुनानी चाहना थोड़ी जी। साड़ी जो आदत है, जिस तरह मैं कल भी कीर्तन च अर्ज की सी कि मैं एक लफज भी अपने पासों नहीं कहना, तो जे कोई गल चुभमी भी लगे तो वह गुरु महाराज जी की है, उन्होंने हक है सानू समझाण दा, कई तरह कहण दा। गुरु महाराज मनुख दे जीवन नू जानदे हन, ये सुन सुना लैंदा है, पर उसे तरह का ही बनिया रहिंदा है, बदलता नहीं। सबे गल्लां जातियां सारियां गल्लां जान लईयां, सुन लईयां, पढ़ भी लईयां, सुन के चुप किया, पर फिर भी कहिंदे सुन के यह चुप किया रहिंदा। सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, फिर चुप किया रहिंदा है। जीवन दे विच ए एक्शन नहीं लेंदा। सब तो पहला तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए है, इन्फॉर्मेशन मिलन तो बाद इंसान का फर्ज है कि उस उत्ते एक्शन लवे। गुरु महाराज आओ अज के कीर्तन दे विच जो सानू समझा रहे हैं, वही कहते हैं कि जिथे तुसीं रुक गए हो, जिथे तुसीं अपना डेरा बना लिया है, जिसनू तुसीं अपनी दुनिया बना लिया है, कहिंदे ओ तुहाडी दुनिया नहीं है, इत्थे तुहाडा डेरा नहीं है, इत्थे तुहाडा घर नहीं है, इत्थे तुहाडी मंजिल नहीं है। बच्चों प्यार नाल पिछे लै जाओ, इस तरह कीर्तन च डिस्ट्रैक्शन हुंदी है और उस ख्याल की लड़ी के विच विघन पैंदा है।

आप जी ने बाणी नूं पढ़दिआं जां सुणदिआं एक लफ्ज बहुत दफा सुनिया होएगा, निज घर। निज घर बाणी च आंदा है ना। गुरु महाराज कहते हैं जितनी देर तक तू अपने निज घर के विच नहीं चल जाता, जिहड़ा तेरा अपना घर असल घर, उतनी देर तक तू बेघर है। बेशक तेरे पास घर है भी, ता भी एक घर तेरा नहीं, एक घर नहीं। तो गुरु महाराज जी की बाणी का यह जिहड़ा सुनेहा है, यह जिहड़ा मैसेज है, यह जिहड़ी मत है कि इंसान तेरी जिंदगी ने उस दिन पूर्ण तौर पर सुकून और सुख दे विच पहुंचना है जिस दिन तू अपने निज घर दे विच पहुंच गया। कीर्तन सोहले का पाठ असी रोज करते हैं। सोहले की बाणी दे विच असी ये पंक्ति भी रोज पढ़ते हैं। पंक्ति असी रोज पढ़ते हैं, पर असी पंक्ति पढ़ जाने हैं निज घर नूं प्राप्त करन दी ना ते अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होंदी है ते ना ही वो चीज साडे वास्ते कोई खास इशू बनती है कि मैं अपने इस गुरु बाबा जी दे वचन च जो अपने निज घर नूं लभण नूं आख्या जा रहा है उस निज घर नूं भी लभना है। पर असीं पढ़ रोज जाने हैं। यही कारण है कि गुरबाणी सिर्फ एक पढ़न तक रह गई है, जो इसकी असल साइंस है उस वल असी कदम नहीं उठाए, अपनी जिंदगियां नूं उधर तोरिया नहीं। हुण पंक्ति रोजाना जिहड़ी फेमिलियर है, असी पढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं

गुफा पुराने लोग ऋषि मुनि गुफामा बना के रिहा कर दे सन। गुरु महाराज जी आखदे ने साडी भी एक गुफा है, असि एक गुफा दे विच रहने हां, पर ओ केड़ी गुफा है? कहंदे सहज अवस्था। हुण सहज की चीज है? आत्मा ही सहज है। अकाल पुरख वाहिगुरु सहज है। सहज का मतलब जो कदे भी ना बदलता होवे उसनु सहज आखते हैं। शरीर सहज दे विच कमजोर हुंदा है, कदे ताकतवर हुंदा है। शरीर दे विच अनेकां चेंजेस आंदियां हन, कदे बचपन है, कदे जवानी है, कदे बुढ़ेपा है। शरीर दे विच हर वक्त चेंज आंदी है। शरीर दे अंदर एक होर वस्तु है, वह है मन। वो भी सहज दे विच नहीं है। ना शरीर सहज है, ना मन सहज दे विच है। ते सहज दे विच केड़ी वस्तु है? केड़ी वस्तु है? आत्मा। आत्मा जो वस्तु है वह सहज दे विच है। गुरु महाराज जी कहंदे वो सहज जो है, आत्मा जो है, उस दे विच असीं अपनी गुफा बना के उत्थे रहने हां, वो साडा घर है।

हर्ष अनंत, अनंत का मतलब लिमिटलेस, कहते बेअंत, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी खुशी है। उत्थे हर्ष अनंत सोग नहीं बिया, सोग का नामो निशान नहीं है, कहते हैं सोग घर गुरु नानक को दिया। परमेश्वर ने अकाल पुरख ने गुरु नानक नो कर दिता है, वह है निज घर। किते महाराज उसनु सहज गुफा आखते हैं कि सहज गुफा घर आसन बांधिया, किते आखते हैं हरख अनंत सोग नहीं बीया, सोग घर गुरु नानक को दिया। तो एक पंक्ति होर सुनाना, कहते हैं नानक बद्दा करता हां। असी भी जदों एक ते हुंदा ना भी बनया बनाया कर ले लेना, एक हुंदा है कस्टम मेड हाउस बनवाना, के प्रॉपर कोई आप सिलेक्ट करके लॉट लैके कोई लोकेशन देख के कोई जगह लैके फिर आप उत्ते अपनी डिजाइन दा अपने मतलब दा घर बनवाना, घर बनना। गुरु महाराज जी आखदे हन के मैं अपना घर उत्थे बनाया है, नानक बद्दा घर तहां, कि मैं अपना घर तहां यानी उत्थे बनाया है, किथे जिथे मृत ना जन्म जरा, ना उथे मृत्यु आंदी है, ना उथे जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ेपा है। भाव उथे निज घर महल पावो सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा, उथो फिर वापस फेरा नहीं होएगा। उस घर च पहुंच के ही तुसी अपनी मंजिल च पहुंचते हो। उस तो उरे उरे जितने भी घर हैं गुरु बाबा जी आखते हैं ये तुहाडा डेरा नहीं है, ये रस्ता ही है। मनुखा जन्म जो है ओ राह दे विच ही तुसी हो, ये पेंडा ही है, इसनु मंजिल ना समझ लो। ते इथे घर बना के बैठ गए ते उथे रुक गए ते फिर तुसी मंजिल ते ना पहुंचे, रस्ते दे विच ही रुक गए। ये है गुरमत दी तालीम। प्यार नाल इस पंक्ति नु गाओ।

एक रात दे प्रौने तुसीं इत्थे आए हो, पर आसां ऐदां बनियां होईयां हन जिवें कई युग तुसीं इत्थे रहना है। बाबा जी आखदे हन गुरु प्रसाद जाने मेहमान, गुरु दी कृपा दे नाल अपने आप नूं इत्थे चंद एक दिनां दा मेहमान समझे तां किस दरगाह पावे मान, तां जाके नूं दरगाह च मान मिलना है, इज्जत मिलनी है, दरगाह च पहुंचना है। सो प्रौने दी तरह महाराज जी ने ए मेहमान दा मेटाफोर जो है ए क्यों लिया है, इस नूं थोड़ा समझ लईए। क्योंकि मेहमान जदों किते जांदा है उसनूं ए पता हुंदा है कि उसका घर नहीं है और उसने इत्थों जाना है, इस करके वह उस जगह दे नाल अटैच्ड नहीं हुंदा, उसकी तमन्ना अपने ही घर जाण दी बनी रहिंदी है। हुण साडे अपने दिलां च अपने उस घर जाण दी कोई तमन्ना नहीं, इत्थे ही रहण दी है। जिवें मेहमान किसी दे घर जाके फिर यह सोच के बह जाके हुण इत्थे ही मैं रहना है तो कितना गलत एटीट्यूड होएगा। नंबर दो, जो मेहमान किसी के घर जाता है तो मेहमान उस घर वाले दीयां चीजां नूं अपनियां नहीं बनाउणी शुरू कर लैंदा। अकाल पुरख की यह सृष्टि है, अकाल पुरख दी सारियां वस्तुआं ते दातां हन, सब कुछ उसका है, लेकिन असी एक मेहमान की तरह जरूर आए हाँ पर बाद दे विच उस दीयां वस्तुआं नूं इकट्ठियां करनियां शुरू कर दिता। जिसके घर च मेहमान आए हां हुण उसका वध तो वध जितना कुछ हो सकता है संभाल लो, इकट्ठा कर लो, जितना हाथ लगता है लगा लो, इसके हाथ होए तां सब कुछ ले। महाराज जी बाणी च आखदे हन कि इह बंदे दे वस होवे तां सारा कुछ इकट्ठा कर लै। कहिंदे तुसीं इकट्ठा करन लग पए हो, तुसीं तां मेहमान की तरह आए हो, कुछ भी इकट्ठा करन की जरूरत नहीं, मेहमान की तरह रहो। मेहमान ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਵ ਹੈ ਸਭ ਚੋਰ। महाराज जी आखदे हन मेहमान दे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुंदे हन, मेहमान बड़े संजम दे नाल उत्थे दी चीज़ां नूं वरतदा है, उन्हां नूं अपनियां नहीं समझदा, उत्थों जाण दा भी उहदा कोई प्लान हुंदा है, इह नहीं कि फॉर एवरी ही उत्थे आया हुंदा है। मेहमान चंगा ही उदों तक लगदा है जदों पता हुंदा होए कि इस तरीक नूं इसने चले जाणा है, जो अणमिथे समय लई आ जाए उहदा पता ही नहीं कि उसने जाणा है जां नहीं जाणा, फिर मेहमान मेहमान नहीं रह जांदा, उसकी कदर नहीं रह जांदी। गुरु महाराज कहिंदे हन वाट ना करे मामला जाने मेहमान, कहिंदे अपने इस दुनिया इस जिंदगी दे जीवन दे रस्ते उत्ते परमात्मा दे वल नूं जिहड़ा रस्ता जा रहा है इस वाट दे उत्ते अपने लिए बहुते झमेले ना खड़े करो, बहुतियां कॉम्प्लीकेशंस ना पैदा करो, बहुते मामले ना खड़े करो, बहुता अपने आप नूं उलझाओ ना, जीवन नूं सीधा साधा साफ सुथरा सिंपल रखो अते अपने आप नूं मेहमान जानो। इत्थे तुहाडा डेरा बिल्कुल नहीं है, डेरा किते होर है, जे इत्थे अपना डेरा बना के बैठ गए रांच ही रुक गए ते रांच रुकियां दे नाल फिर की हुंदा है वह मैं कल नूं आप नूं सुनावांगा। भूल चुक दी खिमा इस पंक्ति नूं गाओ और कीर्तन दी समाप्ति करांगे।